हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधू। ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा। इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा। ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: प्यार
0: प्यार प्यार।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर के हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान थाना। उनकी एक विशेषता बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से बड़े महान

0: live vanuit de hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर यू मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: स्टिक्टिंग अभियन स्टिक्टिंग स्वदेश और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat,

0: hè?
1: Rotterdam. Ja, ja. Vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op. Toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè? Door Zalgren hè? Of ga je trouwen? Door विवाह होने वाले है, तो शादी होने वाले है, या किसी का मुंडन संस्कार है। उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आपके लिए नगमों की सौगात लेकर आई हूँ, कुछ सुनी कुछ अनसुनी नगमे। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम किसी से नफरत करके या किसी का बुरा सोच के शायद अपनी झूठी आना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन मानिए, हमारे अंदर का इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटे। आप हमेशा पुरसुकून रहेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता।

इतनी शक्ति हमें दे न दाता। कुलदीप सिंह की मौसिकी थी और अभिलाष का लिखा तर्ज था। इसी रूहानियत अंदाज में नाथ शरीफ पेश है, तलत महमूद की मखमली आवाज़ में।

फरिश्तों ने नगमे मुसर्रत के गाए। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने अक्सर मजहबी और भक्ति संगीत से शुरू करते हैं। प्रोग्राम का रुख सरासा बदल देते हैं। हमने गजल शौकीन के वास्ते गजलें चुने हैं। उम्मीद है आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है। फिर से तेरी महफिल में, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ। अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस बस अल्फाज नए लाया हूँ। कभी शाख व सब्ज़ व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुलोखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गजल। शायर जिगर मुराद अबादी का कलाम था, मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी, आवाज द वन एंड ओनली आशा भोसले की। वो ख्वाबों की तरह सच्चा बहुत था, ये धोखा था मगर अच्छा बहुत था। वो मेरा है गलत फहमी थी मुझको, मगर सच है मैं उसका बहुत था।

फासला इस कदर नसीब न हो। उस्ताद गुलाम अली की आवाज में पेश थी ये गजल कलाम शायर मदन पाल का था। कह तो सकता हूँ लेकिन मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह, बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है।

दिल छू लेने वाले गज़ल पेश थी, श्री जगजीत सिंह की आवाज़ थी, कलाम था शायर अयाज जंसवी का। उसकी आवाज़ सुन लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को, देखो तो सही मेरे दर्द का इलाज पर असर होगा या नहीं।

अनमोल नगमा पेश था, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। बेखबर हो गए हैं कुछ लोग हमसे, हमारी जरूरत अब महसूस नहीं करते। कभी कभी बहुत बातें किया करते थे हमसे, अब खैरियत तक मालूम नहीं करते।

एवरग्रीन सॉन्ग पेश था आवाज थी मलिकाए तरन्नुम बेगम नूरजहां की। जब से उसके हुस्न पे पड़ी है नजर, मैं हो गया हूँ अपनी हस्ती से बेखबर।

0: सपने।
1: फिल्म आनंद मिसे ये गीत पेश था और ये फिल्म नेकतिन एनस स्वेफदक में रिलीज हुआ था, जिसमें राजेश खन्ना का अहम किरदार था। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की आवाजों में ये जुगल गीत।

सुर और मेरे गीत फिल्म गूंज उठे शहनाई में से लिया है ये गीत, और संगीत से सवारे थे संगीतकार वसंत देसाई। अगला गीत सुनवाते हैं, आवाज़ें है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

राहुल देव बर्मन का संगीत रचना और शायर गुलजार का गीत रचना में पेश था ये दो गाना। अब हम आपको हेमंत कुमार से ये नगमा सुनवाते हैं।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार एन दत्ता की मौसिकी थी, नगमकार था साहिर लुधियानवी। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का जीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा।

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से एक बार फिर आदाब अर्ज। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने फिल्म मुगले आजम के बारे में इतला किया था। फिल्म मुगले आजम कब, कैसे और किसने बनाई है इसके बारे में बातें की थी। फिल्म मुगले आजम मुगल जमाने की शाही खानदान अकबर की कहानी है।

तो जैसे मैंने कहा, फिल्म मुगले आजम मुगल जमाने की शाही खानदान अकबर की कहानी है। 16वीं सदी की तारीखी वाकयात है, हिस्टोरीज फरहाल है। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा सा शहनशाह अकबर के बारे में कुछ बयां करूंगी। अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1524 में हुई थी। इंडिया के राजा महाराजाओं में अकबर सबसे मशहूर था। हिंदू और मुस्लिम को एक नज़र से देखता था। शहनशाह अकबर के कई बीवियां और कई बच्चे थे। उनके कितने बच्चे छोटी ही उम्र में गुजर जाते थे। शहजादा सलीम महारानी जोधाबाई का बेटा था। सलीम का एक भाई और था मुराद, लेकिन वो हमेशा नशे में रहता था और नशे की सबब से उनकी मौत हो जाता है। पिछले प्रोग्राम में मैं बतलाई थी कि अकबर के कई महलों था। दिल्ली के लाल किला उन्हीं जमाने का है और आगरा से पहले एक छोटा सा शहर है फतेहपुर सिकरी, जहां भी अकबर का महल था। महल चारों तरफ से बना था और बीच में मैदान था जिस पर एक मंच बना हुआ था। हर शाम को शास्त्रीय संगीत होता था। अकबर को तानसेन के संगीत बहुत पसंद था। जब अकबर बादशाह तानसेन के बारे में सुना तो उसे अपने दरबार में गाने के लिए दावत दिया। अकबर ने तानसेन की पहली कॉन्सर्ट में उसे मालामाल कर दिया 2 लाख रुपये से। इंडिया में अभी भी शास्त्रीय संगीत के बारे में जब जिक्र होता है तो तानसेन के नाम पहले लिया जाता है। तानसेन इंडिया की पहचान है, जैसे आगरा की ताजमहल जो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां शहनशाह अकबर का पोता क्लैंजोन था। तो इसी तरह हमने छोटे रूप में शहनशाह अकबर के बारे में बयां किया, जो 16वीं सदी के मशहूर राजा था और शहजादा सलीम के वालिद।

0: पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आपने सुना कि सलीम बचपन में शरारत करता था, शाही तौर तरीके की नाफरमानी। अकबर उसे जबरदस्ती फौज में भर्ती करा देता है।
1: बहुधा हम रोजे बद नहीं देखेंगे जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक औबाश शहजादे का खिलौना बन जाए। मान सिंह, इसके सर से मां के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौद पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो। लो, हम आज मुगलों का मुस्तकबिल तुम्हारे हवाले करते हैं।

0: मैदानी जंग से साहेब आलम का जर्रा बख्तर आया है।
1: सलीम, मेरा सलीम,
2: मेरा सलीम।
3: सालों बाद जब सलीम जंग के मैदान से वापस आता है तो उनके लिए दावत की तैयारियां होती है और माँ अपने बेटे को इस तरह से इस्तकबाल करती है।
1: मेरा लाल, मेरा बच्चा।
4: हिंदुस्तान के अजीम शान मलिका।
1: नहीं महाबली, एक माँ, सिर्फ माँ और कुछ नहीं।
4: हमें ये मालूम नहीं था कि महारानी जोधा एक कमजोर माँ के हाथों इतनी मजबूर हो सकती है, अपने विकार को भूल सकती है।
1: उफ महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो उस माँ को तड़पने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती, जिसके बेटे का लहू इस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है।
4: उसे तड़पते दीजिए लेकिन रोने ना दीजिए। वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा।
3: फिल्म मुगले आजम की बात कुछ और है। पेशकश और हिदायतकार आसिफ इस फिल्म को सबसे अलग बनाने का मकसद था। एक ऐसी शानदार फिल्म जो पहले कभी नहीं बनी, एक जज्बाती रोमानी भरी कहानी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। जितना फनकार थे इस फिल्म में सब तैयार थे। मौसिकी और गाने वाले से बात हो चुकी थी लेकिन मुगले आजम के मुहूर्त में बहुत वक्त लगा था। प्रोड्यूसर आसिफ मोहन स्टूडियो में अपना शीश महल बनवा रहा था, राजस्थान की शीश महल का नक्कल। नक्कल शीश महल बनाने में आसिफ को 2 साल इंतजार करना पड़ा। इस नकली शीश महल के शीशे बेल्जियम से लाया गया था। चारों तरफ हर एक के जुबान पर आसिफ के बारे में चर्चा हो रहा था कि उन्होंने एक आलीशान महल मोहन स्टूडियो में बनवा रहा है जहां फिल्म मुगले आजम का शूटिंग होगा। पर इस फिल्म के इंतजार में प्रोड्यूसर नंदलाल जसवंत लाल नेखतिंद्रियम फैव तक में मुगले आजम की कहानी पर फिल्म अनारकली बनाया, जिसमें प्रदीप कुमार सलीम के किरदार अदा किया और उन दिनों की अदाकारा बीना राय थी अनारकली। फिल्म अनारकली की मौसकार है से रामचंद्र और कैसे हम भूल सकते हैं लता मंगेशकर की अमर गीत, जैसे कि ये गीत आइए सुनें।

0: अभी आपने फिल्म अनारकली का गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि प्रोड्यूसर हिदायतकार आसिफ को मुखले आजम बनाने में कई साल लग गया था, और इन सालों के दौरान प्रोड्यूसर नंदलाल जसवंतलाल सलीम और अनारकली की कहानी पर फिल्म अनारकली बनाए। ये अक्सर होता है, एक फिल्म जब मशहूर हो जाती है तो उसी तरह की कहानी दोहराने की कोशिश करते हैं फिल्म वालों ने, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन और बाद में शाहरुख खान की डॉन, दिलीप कुमार वैजयंती माला की देवदास और शाहरुख खान माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की फिल्म देवदास। और कितने फिल्में हैं जिसकी कहानी कई बार दोहराई गई है। खैर, हम अपनी कहानी से भटक रहे हैं। आसिफ को जब एहसास हुआ कि सलीम और अनारकली की कहानी पर फिल्म अनारकली बन रहा है, तो उन्होंने घबराई नहीं। उसे यकीन था कि उनकी फिल्म मुखले आजम जब पर्दे पर दिखाएगी तो दर्शक 16वीं सदी की दौर में महसूस करेंगी। हर मौजों पर मुखले आजम अलग होगा। इसके डायलॉग, संगीत, लिबास, अदायगी, कैसे हम भूल सकते हैं फिल्म की उस मंजर को जहां शहजादा सलीम एक मूर्ति को बेनकाब करता है, तो देखते ही उनके दिल से आह निकलता है, एक पल के लिए दिल थम जाता है और सोचता है काश इस मुजस्समे जान आ जाती, इस खूबसूरत मूर्ति से सलीम को मोहब्बत हो जाता है। संतराशी बेल्थावर वक्त पर मूरत तैयार नहीं कर पाया था, तो एक कनीज को मूरत बनाकर चेहरा पर नकाब डालकर दरबार में पेश करता है। अकबर को भी जब एहसास होता है कि सामने एक जीती जागती लड़की है, तो उसकी खूबसूरती से निहायत मुताशर हो जाता है और नाम देता है अनारकली। सुनिए किस तरह शहंशाह अकबर उस जीती जागती मूर्ति की खूबसूरती को तारीफ करता है।
1: मुझे तजवीज पेश करने की इजाजत चाहती है।
2: इजाजत है?
1: अफसानों में है कि मुजस्समों की निकाब कुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी।
2: तजवीज पसंद आई शेख, अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं।
3: दिल्ली लाई, हुक्म की तामीर होगी।

0: सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है।
1: कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है।
0: मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया?
1: आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संगतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता।
0: संगतराश का अनोखा फन यकीन दाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही?
1: कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं।
0: बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। रानी, आप इसे अपनी कनीजों में दाखिल कर लीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। और कल कृष्ण जन्म के जश्न में अनारकली
2: राधा के लिए मुनासिब रहे।
0: शेखू, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली।

शहजादा सलीम सालों बाद वापस आता है, पर बदला नहीं। वो जज्बा, जो शीलापन, मौसिकी से प्यार, शहराना अंदाज में बातें करना, खूबसूरती से प्यार, हाँ, सलीम को इश्क हो जाता है। एक शहजादे को एक कनीज से मोहब्बत हो जाता है।

इस फिल्म का ना भूलने वाले उस मंजर, चांदनी रात में सलीम और अनारकली का रोमानी भरी मिलन, साथ में भरे गुलाम अली की आवाज, कितना खूबसूरती से हिदायतकार आसिफ इस मंजर को फिल्म

सलीम और अनारकली की बेपनाह गहरी मोहब्बत की अंजाम क्या होता है, अगले हफ्ते की प्रोग्राम में हम बयां करेंगे।

फिल्मी दुनिया पेश था जिसमें हमने सुनहरी दौर का पेशकश और हिदायत का के आसिफ की फिल्म मुगले आजम के बारे में बयां किया। आपने सुना कि उसे इस फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आइए सुने तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज़ों में ये जुगल गीत।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये गीत। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और एसहा बिहारी का लिखा तर्ज था। आज भी सुनहरी दौर के गाने सुनने में कितना सुकून मिलता है। आज भी इसमें वही ताजगी है, वही हरियाली है। गीत चाहे डर भरा हो या मोहब्बत भरी।

शे राना अंदाज में पेश था ये गीत। आवाज थी हेमंत कुमार की और खुद उन्हीं का सजाया संगीत था कलाम शायर गुलजार का। अब लीजिए पेश है सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत।

फिल्म जहाँ प्यार मिले में से ये गीत पेश था। आवाज थी सुमन कल्याणपुर की, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन, कलाम था हसरत जयपुरी का। अगला गीत पेश है, आवाज है मेहंदी हसन साहब की।

दिल छू लेने वाली नगमा पेश था आवाज थी मेहदी हसन साहब की और ये नगमा पाकिस्तानी फिल्म आईना में से लिया है। इसी फिल्म में से आइए सुने ये नगमा, आवाज है नयारा नूर की।

हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। फिल्म आईना का नवा पेश था, गायिका थी नयारा नूर। गुलशन महके बरखा बरसे पतझड़ जारा कुछ भी हो, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम आशिकाना है।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलाम मोहम्मद की मौसिकी, कलाम कमल अमरोही का, और ये नगमा फिल्माया गया था द ट्रेजिडी क्वीन मीना कुमारी पर। रोमानी अंदाज में आइए सुने मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये दो गाना।

चंदा मैं चांदनी, कमाल का गीत पेश था। गायिका थी लता मंगेशकर, संगीत से सजाए थे संगीतकार जयदेव, और संगीत रचना था शायर बालकवि बैरागी। भीगी हुई एक शाम की दहलीज पर बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है।

कमाल का नगमा पेश था मौसकार रघुनाथ सेठ की मौसीकी थी, नगमकार था शायर कैफी अजमी, गायिका थी अनुराधा पौडवाल।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा सुना। मौसिकी से सवारे थे लक्ष्मीकंद प्यारे लाव। इसी मोहब्बत भरी अंदाज में लीजिए पेश है ये नगमा।

स्वर की मालिका लता मंगेशकर से पेश था ये नगमा। सख्त हाथों से भी, सख्त हाथों से भी छूट जाती है उंगलियां। रिश्ते रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, उषा खन्ना ने संगीत से सवारे थे, गीतकार था शायर असद भोपाली। गुजरे है तेरी साथ जो दिन रात, अभी तक आंखों में बसे है वही लम्हात अभी तक। रहने नहीं देता मुझे तन्हा वो तसव्वुर, जिंदा है मेरे दिल में तेरी जात अभी तक। तू नक्श है दिल पर मेरी तस्वीर की सूरत, बदले ही नहीं मेरे हालात अभी तक।

छू लेने वाले नगमा पेश था स्वर की मलिका लता मंगेशकर की आवाज में। मोहब्बत, मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत मोहब्बत बांटने वालों को मिला करते हैं।

मौसिकार राहुल देव बर्मन की मौसिकी थी, नगमकार था शायर जावेद अख्तर। दिल छू लेने वाले नगमा पेश है, आवाज है मोहम्मद रफी साहब की।

शेराना अंदाज में पेश था ये नगमा, चित्रगुप्त की मौसिकी थी, नगमकार था शायर मजरू सुल्तानपुरी। आज भी इन नगमों में वही ताजगी है, वही हरियाली है, बार बार सुनो तो भी जी नहीं भरता। तो लीजिए एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहेब से अगला नगमा।

चांद कितनी दूर था। मोहम्मद रफी साहब से आपने भी ये नगमा सुना। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चराहों ने मेरी नींद उड़ा रही है।

फिल्म प्यासे दिल में से ये नगमा पेश था। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, नगमकार था शायर जान निशार अख्तर। अगला दो गाना सुनवाते हैं, गाने वाले हैं महनाज और आलमगीर।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमाती निशा।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Stichting Abhiyan. Stichting Swadesh और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं। इस साल के पार्थिव शिव पूजन में हिस्सा लेने के लिए पूज्य पंडित मान्यवर श्री पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी के साथ शिव पूजन इस साल है अगस्त के 9 तारीख दिन में 12 बजे से 6 बजे तक स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में, और पूजन में पान फूल प्रसाद अर्पण करने के पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप हर एक को प्रेम पूर्वक निमंत्रण है आने के लिए। 9 तारीख अगस्त नई खन और खुशतस दिन में 12 बजे से स्ट्रांत नॉर्थ आ जूतरमीर में।

यार हो जा, तैयार हो जा, तू यार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन सुन वक्त कर हाँ जली ब्रासा फेस्ट यस फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out हाँ हम बोले रेली तो से तो हैव यू नॉट गेन टिकट्स दन इज दिस योर चांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फाज़ 2 मोय सीज़न इन फाज़ 2 टू स्कोरन वक्त नीट लंग वंट इन द फॉलोइंग फाज़ गान द टिकट प्राइसेस ओमहोग टू जल्दी कर मौसी चली घूमे चली ब्रासा फेस्ट हाँ 100 चली ब्रासा फेस्ट बेस्टेल न्यू फिया www.brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

most sensational and the best leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम आप सुन रहे हैं. मैं हूँ शहीद गुलजार. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं यू आर के माध्यम से. प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना. वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर काम का आज के वास्ते, आज नहीं तो कल के वास्ते, आप फोन का नंबर नोट कर लेना. एम्स्टरडम में 020-409-0807. इट्स यू आर, तू जाने है तो.

Sață mundărpar. Sață mundărpar, mă te repice, pice agăi. Mix Max Songs, apke mă de me prăstut ki gjarë he, You Are Kizërie. हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज की जा रही स्टूडियो एम्स्टरडम से और मिले जुले संगीत में इस बार आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़।

दीना के शबाब की आंचल संभालिए। जगजीत सिंह की आवाज आपने भी सुने है उजाला रेडियो के माध्यम से। हाय बॉय गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन लोकल सिलेक्शन आपके खिदमत में अर्ज है। नौजवान स्टार्स के साथ पर बेकरार है यार, बेकरार है यार, आजा आजी से होगा अब प्यार।

बेकरार बेकरार है यार, आजा आज इसे होगा अब तो प्यार। उम्र बीती पर जवान है नैना, क्या बात है आजा जी। गोल्डन ओल्ड, गोल्डन ओल्डी लोकल सिलेक्शन आपने भी सुने हैं नौजवान स्टार्स के साथ पर। बेकरार है यार आजा आज इसे होगा अब तो प्यार। रेडियो के क्षेत्र पर हर कामर काज के वास्ते फोन का नंबर है 02409 08 07। कुछ मिले जुले संगीत में ये भी अर्ज है पंकज उदास की आवाज, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे अच्छा लगता है, कुछ इस तरह से।

0: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: Mire jule sangeet me isbaar, suro kabatsya Mohammed Rafi sahab ki awaz. फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है, सन 1966 का फिल्म, 1966 का फिल्म मोहब्बत जिंदगी है से हम आपको सुनाने वाले हैं कि तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला कि मेरे सीने में भी दिल है एक धड़कता हुआ।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने भी सुने हैं, तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला कि मेरे सीने में भी दिल है एक धड़कता हुआ। फिल्म का नाम मोहब्बत जिंदगी है। मिले जुले संगीत में भी एक और लोकल सिलेक्शन हो जाए, इस बार है वाहिद अशरफ की आवाज, खिलती नहीं कोई वफा। स्टेशन है यू आर, तू जाने है तो।

सुनसान है मेरे दिल की गली, खिलती नहीं कोई वफा की कली। वाहिद अशरफ की आवाज। मिले जुले संगीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार।

वंस अगेन प्रोग्राम में पंकज उदास की आवाज। सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश का मौसम, हर मौसम है पीने का मौसम। जनता की आवाज, आप ही की आवाज, यू आर का पैगाम। एंजॉय दिस सॉन्ग।

वेरी नाइस सॉन्ग आपकी खिदमत में अर्ज की गई है कि सर्दी हो या गर्मी या बारिश का मौसम, हर मौसम है पीने का मौसम। पंकज उदास की आवाज़।

आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज आप अभी सुने हैं। उजाला रेडियो का पैगाम में कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं। द रॉकिंग एंड सेंसेशनल यू आर का पैगाम में जैसे कहा है कुछ मिले जुले संगीत अर्ज है। फोन का नंबर 02409 0807 पर आप डायल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते। मैं हूँ शहीद गुलजार, प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते जाना। हमारे बाद में भी और कौन कौन खिदमत करने वाले हैं आज रात्रि तक, स्टे ट्यून्ड।

गाना सुन, जहां तू ताके है हम भी वहां ताकीला। जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादा दख 29 एंड ज़ोंडख 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन है भीतर जिया इवेंट सेंटर दिन हाँ में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओ कमेज़ और ब्राज़ा फेस्ट।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

अब प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, फार्डीन जो भी रहेगा और ब्रासा फेस्ट जाटरडाग 29 एंड जोंदाग 30 अगस्तस इन जिया इवेंट सेंटर एंड मत भूलना koop je tickets, je super early bird tickets, nu vanaf slechts €8,50 via brasafest.nl. Doe je liker.

Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Cheli Gume, Cheli Brazzafest. Ha, 100 Cheli Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

एंड गर्ल गर्ल गर्ल बन गई। यो यो हो ही था यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर एंड सुखबीर इन लोगों से आप सुने एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे
1: किसी से प्यार।
0: जुबिन नौटियाल की आवाज उजाला रेडियो एंड इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा तू देख ले उजाला.nl उजाला.nl।

अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

अरे कजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। लता जी एंड किशोर कुमार फिल्म अपना देश का गीत सुनने वालों, अगला गीत देखा जाए तो शैलेंद्र सिंह की आवाज में होंगे।

0: मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन जब से देखा मैंने तुझको बस शायरी आ गई। शैलेंद्र सिंह की आवाज, फिल्म बॉबी का गीत। एक बार फिर किशोर कुमार के साथ लता जी को आप सुनेंगे।
1: हाँ? क्या कहा?

सुनिए। मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद जी की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर, और ये उजाला रेडियो है। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे अब।

हल जाए हाय रात ना जाए। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिल्म गाइड का गीत को आप सुने, मुकेश जी हिस्सा लेंगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश जी की आवाज और फिल्म लाल बंगला से गीत को आप सुने। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब शारदा के साथ।

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio.
1: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio.
2: Ujala के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए.

0: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

को आप सुन रहे हैं सुनने वालों, इस चून के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्द ए दिल। प्रोग्राम दर्द ए दिल में दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं, उन गीतों जिसे सुन करके दिल को शायद तसल्ली मिल जाएगी, या तो हो भी सकता है कि दिल का दो जो दर्द है और बढ़ जाएंगे।

दिल की तमन्ना यही है लता जी की आवाज में। आप सुने गीत, फिल्म का नाम हंसते जख्म, 1973 की फिल्म जिसमें उन दिनों काम किए प्रिया राजवंश, नवीन निश्चल और बलराज साहनी।

दूर दूर सवेरा, मुकेश जी की आवाज। फिल्म आह से आप सुने 1953 की फिल्म, 1953 की फिल्म, और काम किए इस फिल्म में उन दिनों राज कपूर के साथ नरगिस। और सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरे गीतों के साथ पेश है।

भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आप गीत को सुने नसीम बेगम की आवाज़ में, 1965 की फिल्म सहेली से निकाला हुआ, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों प्रदीप कुमार के साथ कल्पना जी।

हेमंत कुमार की आवाज और 1966 की फिल्म अनुपमा से आप सुने, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों धर्मेंद्र के साथ शर्मिला टैगोर जी।

मिलके बिछड़ गई अखियां, आमिर बाई की आवाज में आप गीत को सुने। बहुत ही पुरानी फिल्म, 1944 की फिल्म, 1944 की फिल्म, जिसमें काम किए करण दीवान और स्वर्णलता। हाँ, बहुत ही पुरानी फिल्म रतन। उजाला रेडियो है ये, फिल्म या तो कहिए प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल। पेश है अगला गीत और ये होंगे, हाँ, लता जी की आवाज में फिल्म हकीकत का गीत।

जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। फिल्म हकीकत लता जी की आवाज़ और फिल्म हकीकत 1964 की फिल्म काम किए उन दिनों, इसमें धर्मेंद्र, बलराज सानी, विजय आनंद और प्रिया राजवंश।

वो जब आए, वो जब याद आए तो बहुत याद आए। लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब से गीत आप सुने। 1963 की फिल्म पारस मनी से काम किए इस फिल्म में महिपाल और गीतांजलि। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दे दिल, दर्द भरी गीतों के साथ।

द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज़। 1964 की फिल्म जहां अड़ा और काम की, इस फिल्म में माला सिन्हा के साथ भारत भूषण एंड शशिकला जी।

चमन में रह के वीराना शमशाद बेगम की आवाज़ और फिल्म दीदार 1951 1959 के फिल्म दीदार में काम किए अशोक कुमार, दिलीप कुमार, नरगिस और निमी। अब चलिए, मोहम्मद रफ़ी साहब हिस्सा ले रहा है।

पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा माना, बड़ी भूल हुई हमसे कि हमने क्या समझा और क्या जाना। पत्थर के सनम 1967 के फिल्म में काम किए मनोज कुमार, मुमताज, वाहिदा रहमान और आवाज थी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की। उजाला रेडियो प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ।

तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। लता जी की आवाज। फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम, 1973 में बनाई गई। नीखंतिन द्रियन सैफन तक में राजकुमार, और देखा जाए तो राजकुमार के साथ विजय आनंद और प्रिया राजवंश भी इस फिल्म में काम किए हैं।

0: सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420
1: जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे

इनको चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में गानी, जहां भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिल गिर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे क्या?

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा